0: सवारी साधन को इंजन और तेजस विनिकरण संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजन र तेजस को अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराट नगर सड़क प्रयोग ध्यान दिए सड़क सीमा अतिक्रमण नगरऊ सड़क सीमा में अस्था एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरऊ सड़क को नाली ठल तथा पानी निकास बंद होने नदी सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गराउं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भार प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्ने गरौं सड़कको तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: डोला डोला हाथ में मेहंदी भरी छोड़ी गरी तुम्हारा डोला डोला हाथ में मेहंदी भरी छो

0: Rádio Solu FM Solu FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय Solu FM Studio Time
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

0: नमूना दुधकुण्ड आयल फार्म स्टोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0385-20-243 नमूना दुधकुण्ड आयल फार्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमूना दुधकुण्ड आयल फार्म स्टोर सँगै यूआई स मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मर्मत गरिन्छ सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमूना दुधकुण्ड आयल फार्म स्टोर सोनु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गारमा जोर बौद्ध सुलुखु
1: बाबा मलाई आज स्कुल जाने मन छैन आज जाने नि है
2: सन्चो भएन
1: होइन यतिकै जाने मन लागेन
2: यतिकै पनि हुन्छ
1: मैले साइन्सको कन्ठे

0: प्रिंट मुजुकर को रकम सवारी साधन को नंबर एकिन करने संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सवारी कर नवीकरण वस्तुर लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेन का लगी संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोक्सर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एकिन करना तथा कर बुझाए पी प्राप्त हुए बीमा आपने बुझाए कर को रकम आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय पुरातत्व मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश
0: बाल बालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग हटाउँदछ लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौ बाल बालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौ बाल बालिकाको सुंगतमा ध्यान दिऊ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिऊ बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ बाल बालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौ विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौ बाल बालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहितमा सारी सन्देश।

0: प्रोनु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Studio time. Studio time.
2: 3 p.m. Musical theme budget.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 500 लुकुंबू

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदान करने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निशुल्क सेवा प्राप्त करने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईना गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राख् सकने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान
1: हेलो दाई नमस्कार
2: नमस्कार भाई कता छौ
1: मत गाउँमै छु नि दाई एसी परीक्षा सकेर बसेको साथीभाई सबैले काठमाडौँ गएर कलेज छानिसके कहाँ पढ्ने के पढ्ने म त अमाउमा परे दाई
2: अमाउमा पर्ने कुरै छैन भाई तिमीसँग एसी दिएका साथीभाइ चारको मनाइसम्म कलेजमा आएर बुझेर तिमी पढ्ने निर्णय गरेर बुझिसक्यो तिमी पनि ढुक्क भएर आउने अब तिमी पढ्ने किनकि मनाइसले आज लाखौं विद्यार्थीको सही गन्तव्य हो मनासु वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर करना मदद करते आयो न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साधन सूचीवादी संपर्क नंबर 9803362382 9803362387
0: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्यजित कोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्यजित कोशी को समृद्धि मात्यजित कोशी गांवपालिका फुलखुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार साझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुरू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन और सुरू एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सकूने

सब दारु पीता कुछ न सलाख सिम चक दीदा सब दारु पीता कुछ न सलाख सिम चक

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 037590222 9852288022 र 9842808300।

0: पूर्ण एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतुन नगर पालिका 5 सोनू कुंभू
3: register enjoy with us.

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चुकिया। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजानी ओखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 037590222 9852288022 98482030।

0: बसंत को माया लुभावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को नहा चलता, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर तर दिए के होना है ना, हो ती याद हरू नहीं हुन कुसुमे रुमान याद आयो
1: आयो
0: पहचान सामी सिते
2: कुसुमे रुमान।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Surya Film. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start for start with
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू